आरती ठाकुर के स्वर में अभी आपने सुनी संत मीराबाई की रचना। भक्ति संगीत कार्यक्रम की आगे की भक्ति रचना है श्रीकांत पारगावकर के स्वर में। संगीत है राम कदम का।

श्रीकांत पारगावकर के स्वर में आप सुन रहे थे भक्ति रचना, जिसे संगीत दिया था राम कदम ने। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना रंजना पेठे के स्वर में।

रंजना पेठे के स्वर में आप अभी सुन रहे थे समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना। श्रोताओं, भक्ति संगीत कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं संत चोखामेळा की भक्ति रचना उदयन काळे के स्वर में।

उदयन काय ने गाई संत चोखामेळा की सी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब हम समाप्त कर रहे हैं। यह कार्यक्रम आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: ताल एक ताल।
1: अब आप सुनेंगे डॉक्टर रवि किरण नाकोड़ का हिंदुस्तानी ता एकल वादन, ताल एक ताल।
0: लिसन टू हिंदुस्तानी तबला सोलो बाय डॉक्टर रवि किरण नाकोड़, ताल एक ताल।

0: शंकर कबाड़ी साथ दे रहे थे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे श्री वरुण कुमार पाल का गिटार वादन राग जोग।
1: यू आर लिसनिंग टू तबला सोलो बाय डॉक्टर रवि किरण नाकोड। ही वॉज एकम्पनीड ऑन लहरा बाय वसंत कनकापुर एंड श्री शंकर कबाड़ी। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट नाउ लिसन टू गिटार रिसाइटल बाय श्री वरुण कुमार पाल राग जोग।

0: अभी आप राग यामिनी बिलावल पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पल्लव बंदोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे शिवनाथ भट्टाचार्य। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है राग तोड़ी पर सारंगी वादन। कलाकार हैं पंकज मिश्रा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ईमान सरकार। तो लीजिए प्रस्तुत है राग तोड़ी पर सारंगी वादन। कलाकार हैं पंकज मिश्रा।
1: You were listening to a violin recital in the rag Yamini Bilawal. Our artist was Pallob Bandopadhyay. Accompanying our artist on the tabla was Shibnath Bhattacharya. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a sarangi recital. Listen to the sarangi in the rag Todi. Our artist is Pankaj Mishra. Accompanying him on the tabla is Imon Sarkar. Listen now to the sarangi in the rag Todi. Our artist, Pankaj Mishra.

0: अभी आप राग तोड़ी पर सारंगी वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंकज मिश्रा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे ईमान सरकार। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सारंगी रिसाइटल इन द राग टोरी। आवर आर्टिस्ट वॉज पंकज मिश्रा। अकंपनिंग हिम ऑन द तबला वॉज ईमान सरकार। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आइए सुनते हैं रविशंकर अगलावे का क्लैरिनेट वादन, राग मियां की तोड़ी, विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है, साथ संगत है तबले पर माधव मोड़क। आइए सुनते हैं रविशंकर अगलावे का क्लैरिनेट पर बजाया राग मियां की तोड़ी।

अभी आपने शेखर बोरकर ने सरोद पर बजाया राग भीमपला सुना, साथ संगत थी तबले पर विकास पुरंदरे। रागम 24/7 डीटीएच के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अमिताभ चटर्जी का सितार पर बजाया राग बागेश्री में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित रचना रूपक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital by Amitabh Chatterjee. He is accompanied by Vinod.

0: अभी आप अमिताभ चटर्जी का सितार पर बजाया राग बागेश्री सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग मिश्र शिवरंजनी। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू आर लिसनिंग टू द सितार रिसाइटल बाय अमिताभ चटर्जी। नाउ लिसन टू राग मिश्र शिवरंजनी। ही इज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला।

0: अभी आप सुन रहे थे अमिताभ चटर्जी का सितार पर बजाया राग मिश्र शिवरंजनी। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग मिश्र शिवरंजनी बाय अमिताभ चटर्जी। He was accompanied by Vinod Pathak on tabla. This program is a presentation of All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार. रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत. कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी. विलंबित गत झुमरा ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. साथ संगत है बांसुरी पर देवेंद्र मुरुडेश्वर, तबले पर रामभाऊ भोरपकर. आइए सुनते हैं पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी.

अभी अपने पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी सुना। सात संगत थी बांसुरी पर देवेंद्र मुर्डेश्वर, तबले पर रामभाऊ भोरपकर। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी वादन, राग पुरिया कल्याण। विलंबित गत झुमरा ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। सात संगत है बांसुरी पर देवेंद्र मुर्डेश्वर, तबले पर पंडित निखिल घोष। आइए सुनते हैं पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग पुरिया कल्याण।

अभी अपने पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग पुरिया कल्याण सुना। सात संगत थी बांसुरी पर देवेंद्र मुरडेश्वर, तबले पर पंडित निखिल घोष। रागम 24/7 DTH के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तीन ताल में तबला वादन. आज के कलाकार हैं देवेंद्र कांति चक्रवर्ती. आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हिरणमोय मित्रा. तो आइए सुनते हैं तीन ताल में तबला वादन, कलाकार देवेंद्र कांति चक्रवर्ती.
2: दिस इज रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ तबला रिसाइटल. लिसन टू अ तबला रिसाइटल इन तीन ताल बाय देवेंद्र कांति चक्रवर्ती. Accompanying on the harmonium, Hiranmoy Mitra. Now, listen to a tabla recital in Teen Tal by Devendra Kanti Chakraborty.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे देवेंद्र कांति चक्रवर्ती। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे हिरन मोय मित्रा। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग मिश्र देश, राग मिश्र पीलू और राग मिश्र कौशी ध्वनि में ठुमरी और दादरा कलाकार हैं।

0: सुचेता गंगोपाध्याय आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं असित कुमार जाना और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन भट्टाचार्य। सुचेता गांगुली अपने गायन का आरंभ राग मिश्र देश में ठुमरी से कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं राग मिश्र देश में ठुमरी।
1: You are listening to a tabla recital in तीन ताल by देवेंद्र कांति चक्रवर्ती accompanying on the harmonium हिरणमय मित्र। This is Ragam, 24/7 anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal rendition. Listen to Thumri and Dadra in Rag Mishra Desh, followed by Mishra Pilu and Mishra Kaushik Dhwani. Our artist this evening, Sucheta Ganguly. Accompanying on the tabla, Asit Kumar Jana, and on the harmonium, Ratan Bhattacharya. Now, listen to a Thumri and Dadra in Rag Mishra Desh, followed by Mishra Pilu and Mishra Kaushik Dhwani by Sucheta Ganguly.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मिश्र देश में ये ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थी सुचेता गंगोपाध्याय। सुचेता गंगोपाध्याय अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग मिश्र पीलू दादरा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये राग मिश्र पीलू दादरा।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मिश्र पीलू दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी सुचेता गांगुली। सुचेता गंगोपाध्याय अपने गायन का समापन राग मिश्र कौशिक ध्वनि में एक दादरा से कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं राग मिश्र कौशिक ध्वनि में ये दादरा, कलाकार सुचेता गंगोपाध्याय।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मिश्र कौशिक ध्वनि में दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी सुचेता गंगोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे असित कुमार जाना और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन भट्टाचार्य। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ठुमरी एंड दादरा इन राग मिश्र देश फॉलोड बाय मिश्र पीलू एंड मिश्र कौशिक ध्वनि बाय सुचेता गांगुली एकम्पानिंग ऑन द तबला असित कुमार जाना एंड ऑन द हारमोनियम रतन भट्टाचार्य। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता for Ragam 24/7 anytime Indian music।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन. कलाकार हैं नैना देवी. आप सुनेंगे दादरा, बोल हैं गोरी बन के नैनों से चला जादुआ. संगतकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1980 में की गई थी. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी. द रेंडिशन कमेंसेस विद अ दादरा. द अकॉम्पनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला and Sardar Khan on the sarangi. This was recorded in the year 1980.

अगली प्रस्तुति है कजरी। बोल हैं धीरे धीरे से झुलाओ सुकुमारी या हो। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज कजरी।

अब आप सुनेंगे दादरा मिश्र गारा, बोल हैं सुध बिसरत नाही। नाउ लिसन टू अ दादरा मिश्र ग्रा।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं नैना देवी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे ठुमरी भैरवी, बोल हैं हंस हंस गरबा लगाए। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स ठुमरी भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार थी नैना देवी, संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सरंग पर सरदार खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू विल लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड सरदार खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 247 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार है सुरेंद्र शंकर अवस्थी. राग है सावनी नट. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल है सब मिल गाओ. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं आज सब मिल मंगल गाओ. संगत कलाकार हैं तबले पर स्माइल दद्दू खां, सारंगी पर समत खां. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी. दिस रेंडेशन कमेंस विद अ राग सावनी नट. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय स्माइल दद्दू खां on the tabla and Samad Khan on the sarangi.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं सुरेंद्र शंकर अवस्थी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। यह है रागम पर हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे सुरेंद्र शंकर अवस्थी से राग छाया नट। एक ताल में निबद्ध विलंबित ख्याल के बोल हैं आज बधावा गाओ। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं झनन झनन झन झनन बाजे बिछुआ। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी, यू विल लिसन राग छाया नट।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थे सुरेंद्र शंकर अवस्थी। संगत कलाकार थे तबले पर यदुनंदन गोस्वामी और सारंगी पर समत खां। हर पल हर समय रागम किए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय यदुनंदन गोस्वामी ऑन द तबला एंड समत खां ऑन द सारंगी। दिस

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित निर्माल्य डे का गायन. इनका गाया राग शुद्ध कल्याण पहले प्रस्तुत है. चौताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल हैं अल्लाह साहेब. पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Pandit Nirmalya Day. He is accompanied by Mohan Shyam Sharma on Pakhavaj. First listen to Dhrupad in Rag Shuddh Kalyan, said to Chautal. The words are Allah Sahib.

0: अभी आप पंडित निर्माल्य डे का गाया राग शुद्ध कल्याण सुन रहे थे और प्रस्तुत है राग अडाना। पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित निर्माल्य डे। नाउ लिसन टू राग अडाना, ही इज अकंपनीड बाय मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज।

0: अभी आप पंडित निर्माल्य डे का गाया राग अडाना सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी मोहन श्याम शर्मा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग अडाना बाय पंडित निर्माल्य डे। दिस प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत. हिंदुस्तानी संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम.

0: भक्ति संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भजन और श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं आनंदिता सरकार, अनुराधा चक्रवर्ती, बीना रॉय, बुलबुल दत्ता और देवाश्री मुखोपाध्याय। भक्ति संगीत के आरंभ में सुनिए ब्रह्मानंद का ये भजन। कलाकार हैं आनंदिता सरकार। तो आइए सुनते हैं आनंदिता सरकार का गाया ब्रह्मानंद का ये भजन।
1: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. We present devotional songs. We begin the program with bhajan. Our artist is Anindita Sarkar.

0: अभी आप भजन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी आनंदिता सरकार। हिंदुस्तानी संगीत के तहत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है भजन, कलाकार हैं अनुराधा चक्रवर्ती।
1: यू वर लिसनिंग टू भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज आनंदिता सरकार। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. Listen now to Bhajan by our artist Anuradha Chakraborty.

0: अनुराधा चक्रवर्ती से अभी आप ये भजन सुन रहे थे। भक्ति संगीत का क्रम जारी रखते हुए प्रस्तुत है एक और भजन। कलाकार हैं बीना रॉय।
1: यू वर लिसनिंग टू भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनुराधा चक्रवर्ती।

0: अभी आप ये भजन सुन रहे थे। कलाकार थी बीना रॉय और ये क्रम जारी रखते हुए प्रस्तुत है श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं बुलबुल दत्ता। तो आइए सुनते हैं श्यामा संगीत, कलाकार बुलबुल दत्ता।
1: यू आर लिसनिंग टू सूरदास भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज बीना रॉय। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। Continuing the concert, we now present Shyama Sangeet. Listen now to Shyama Sangeet. Our artist is Bulbul Datta.